साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Jasmine and Hayes, Pandit Kaushik Joshi in Peterborough. Thank you for your messages. Neha Kakkar on the vocals. Vehania on Sunrise.
1: Listener's Choice, brought to you by Colors TV.
0: Kids, ready for today's Hanuman story of the day? To save Lakshman, Hanuman carried an entire mountain because he couldn't find the right herb. Lesson, when in doubt, give your best effort. Don't miss the next adventure. Watch Legend of Hanuman every day at 5:30 p.m. only on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk. Sunrise Radio पर इस घंटे का हमारा हिट ऑफ द आवर टेकन फ्रॉम द फिल्म धुरंधर. डोंट फॉरगेट, आई एम चिट चैटिंग विद एक्टर गौरव गेरा, मल्टी टैलेंटेड एक्टर गौरव गेरा, हु प्लेज आलम भाई, हमजा एज इन रणवीर सिंह मेन फ्रेंड एंड एलाई इन धुरंधर 1 एंड 2. वी आर चिट चैटिंग टुमारो ऑन सनराइज. इट इज अ सनराइज एक्सक्लूसिव. इट इज अ कॉन्वर्सेशन यू डू नॉट विश टू मिस. राइट नाउ जैस्मिन सैंडलर, सतिंदर सरताज. जाइए सजना ऑन द यूकेज बिगेस्ट एशियन मिक्स.

0: This is the number one commercial Asian radio station in the United Kingdom. Sunrise Radio, with the latest news headlines. Next. Sunrise
1: Radio. Shabnam Sahi on Sunrise with India's Best Dancer on Sony TV. Backed by popular demand, the stage is set. The dancers are ready. Your favorite dancing show, India's Best Dancer, is back. Starts this Saturday, 9:30 p.m. on Sony TV.
2: अब अमर कर्ज से आजाद है क्योंकि हम साथ हैं। हम प्रिया के साथ हैं उसे एक बेहतर और सही घर दिलाने में। हम मुहिम चला रहे हैं ताकि रहीमा जैसे लोगों पर एनर्जी बिल एक बोझ ना बने। हम हैं सिटीजंस एडवाइस, एक इंडिपेंडेंट चैरिटी, हर जरूरत पर मुफ्त और भरोसेमंद सलाह जो सच में काम आए। हम साझा चुनौतियों पर काम करते हैं एक संतुलित समाज के लिए। हम हैं सिटीजंस एडवाइस, द पीपल्स चैंपियन। Search karein Citizens Advice.
0: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
3: Ramdev Garam Masale, Khushbudar, Sambar Masala, Mazedar.
4: Aur khane ka hame hai?
5: कब से इंतजार
3: चटपटी चाट छोले हर डिश पे सब वाह वाह बोले रामदेव

0: Time check with Brightsun Travel. Brightsun Travel is celebrating 40 years and you get a gift. Enjoy £40 off per adult on handpicked holidays, plus free transfers, spa vouchers and excursions. Discover our new deals at brightsun.co.uk/40.
1: 10:50 on Sunrise with me, Shabnam Sahi, और मिस्टर खान अर्ज करते हैं, ना जवाब दे ना सवाल कर, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तुझे क्या मिलेगा तू ही बता, मुझे यूं उलझनों में डालकर, जिनमें से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सुकून, ऑफ कोर्स नॉट, नो वन एवर सेड दैट, आई एम किडिंग, वेलकम टू द महफिल, आज आप लेट हैं मिस्टर खान, गुड मॉर्निंग।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

ममता शर्मा, सुखविंदर सिंह, अनारकली डिस्को चल। रश्मि इन वेलिंगब्रा, यू गॉट इट। सूरज इन मदरवेल, इट्स नॉट अ सिम कार्ड, नॉट अ सिम कार्ड। Gavin Birmingham, you're right. And Mukesh in Romford, good evening, my friend, you got it right.